0: है त
1: गाउन
2: के भयो के भयो गाउँ के
1: सर्त
0: अनुसार अब भोग्नु पर्यो हामीले होइन

ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ रिश्ता है इस जगह से? स्ट्रेंज, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। सब कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्यों? रांझना,

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: साथै कार्यक्रम सुनेर तपाईहरूलाई बाइबल अध्ययन गर्न मन लागेको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी तपाईहरूलाई बाइबल उपलब्ध गराउनेछौ। हवस्त श्रोता, आजका लागि म प्रस्तुता कुमराज पनि भोलि फेरि उपस्थित हुने वाचकका साथ बिदा हुन चाहन्छु। तपाईलाई प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
1: Elambo FM 89.6 MHz.
2: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो मी गदेरी आइनबा तर परमेश्वरी भरोसा लसिगो जयमसी तथा नमस्कार लास्टो फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसिगो अङ्क 59 रङिदा स्वागत मुला ना वियोग तामाङ तिनिङ रङ्ग दिदिन चुताम जुबर सेमोला स्यन्दोसी रङ्गदा पिन्ब प्रतिक्रियाला अभावरी परमेश्वरला सीमित आतामोला मिसी रङ्गला लागि तिगा लासेला बाचा लामा देन खेनिगदेसे थे आलामुला विषम परमेश्वरला या गदे खिबा आतामुला लुइरी रङ्गला आनन्द सन्दोषे रङ्गदा हरङ्गबा व्यवहारला मुला विवाह तम्री निर्भर आलामुला वा थेनिगदेसे रङ्गला अपेक्षा कदे पुरा लमु लमुला कि आलामुला विवाह तम्री निर्भर आलामुला रङ्गला आनन्द जेखेन याकर कि तम्री निर्भर लामुला परमेश्वर देन सम्बन्ध रोसी विश्वास लादोला कि परमेश्वर से रङ्गदा प्रतिज्ञा लसुबा बेनन तम पुरा लसुला हिब्रु 11:6 विश्वास आलना खालाइसेन परमेश्वर द ताङना लाबरे आखाम तिग्द विषम परमेश्वर मुबा ग्लारी खबा मिसे परमेश्वर मुबा बिबा तामदेन थेबा माइबा मिदा इनाम पिन्ना बिसी विश्वास लदोला मिगदे सिंहला लागिरे जे लाला बिबा मुबा थे आलामा ना नच निराश तमुबा थेन्दे बोरे बा तमुबा तसै दत्ते हेरङबा आतामुला तर्यम ना रुदिनला नला सम्बन्ध ग्याम नला आत्म सम्मान याङबरी रोजप लमुला परमेश्वर नला आबा मुसुला परमेश्वर से नला ख्याल थन्सुला थेन्दे नद थामुला कि जब न परमेश्वरी भरोसा थन्सुमुला परमेश्वर से नदा पिनबरी हाजिरै नोन गे जिन्न लाबरी हमला यर्मिया 17:5 परमप्रभु चुरङ बिमुला श्रापित तगाई थे मी जो जोसे मी गरे मी फेरि भरोसा थन्मुला देन शारीरिक शक्ति रि प्लिङ तमुला जोला तिङ परमप्रभु ग्याम तर्गिबा मुला परमेश्वर से रङला लागि प्रार्थना लसुबा लक्षरी लक्ष्य गरे पुरा लबरी स्यन्द मी गरे देन गे लब ठिक मुला छुट्टा छुट्टन गे लबा ल सट्टा यङ याकर कि समूह लाल युरुब्री छानोन गे लौ बिबा ला परमेश्वरलाई इच्छा मुला यद्यपि याङला भरोसा थे मिगदेरी ताबारी महत्वपूर्ण आरे बरु लुइरी याङला बेनन प्रयास गदेरी सफलता याङसे लाभ याङसे परमेश्वरलाई शक्तिले याङला विश्वास थन्बरी आवश्यक मुला जब रङ थे ताम गोस्युला थेन्दे थेरङ लासी सोस्युला रङला तिङले गेन शान्ति लहामुला थेन्दे रङला आमा आबा छ्याम्ला रङला सम्बन्ध जब तामुला रङला लुई परमेश्वर देनला रङला सम्बन्ध बेपत्ता तामुला थेन्दे स्यन्द छ्याम्ला रङला मित्रदा एक अर्कादा ताङबा शुभ प्रयास तासेला दबाब देन बोझ ग्याम मुक्त तामुला रङ दारेम आनन्दर लागरी थेने गदिरी निर्भर अलोसिगो तिग्द विषम रङसे रङला आबा परमेश्वर ग्याम रङ तोब बेनन माया देन हेर्चा याङबन मुसुला युहन्ना 13:34-35 दहेन्जे गाई एनी गदे दा छा तम गिक कुल्ला एनी गदेसी गिक सेन गिक द माया लौ गाई एनी गदे द माया लवा रङ लसी एनी गदे सेनोन गिक सेन गिक द माया लौ चुदे एनी गदेसी गिक सेन गिक द माया लजी विषम एनी गदे गाला चेला हिन्बा बिसी बिजी जम्मा हेन्से होसेला परमेश्वर से यसु से चोरङ बिसी सुङजे चेला दिबा तिग हिन्बा चेला दि हिन्बा जोसे यसु ग्याम रङ्ला माया प्राप्त लाबरी हाम्बा तामुला थेन्दे थेनिगदेशी स्यान्दोदा थेनो निसर्दा माया प्रकट लामुला दुई कोरन्ती तीन अधेर पाँच खाजिबे ताम नही रङसेन लाबरी खम्ला बिसी आपाङ तर जम्मन ताम परमेश्वर ग्याम लाबरी खम्ला यङला आवश्यकता कदे याङ कदे ज्ञान मुला वा याङ देन तिगा लासेला क्षमता मुवा विवा तामसे पुरा आतामुला नुआ मि थेनेगदे स्यन्दो जे निर्भर तामुला चु जेखेन याकी ताम्रे निर्भर मुला कि याङ से परमेश्वरी भरोसा थान्मुला तिगा याङ परमेश्वरलाई क्षमता वा याङला हरेक जम्मन आवश्यकता पुरा लासेला इच्छा फेरि प्रश्न आलामुला याङ याङला तिङ्री शान्ति थान्दोला चु सेवन कि याङला खोनाता जेखेन लाग्याम हामुला आमेन। रङले जीवनले परमेश्वर से प्रशस्त मात्र आशिष पिन्छु।
3: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर ग्याम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ
2: कार्यक्रमलाई बारे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98-6-85-53-39 धन्यवाद।
3: हस् त त्यो समय रिङ्गा बिदा ताजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
1: टाइम चेक इट्स 7 PM